कोई हमारा नहीं है। समंदर का साहिल पहाड़ों का दामन, समंदर का साहिल पहाड़ों का दामन, बजुज आह के कुछ हमारा नहीं है।

शराबे तसव्वुर पिलाने लगी, शराबे तसव्वुर पिलाने लगी, मुझे मस्तबे खुद बनाने लगी। सुबह मस्त होकर फिर आने लगी, पयामे मोहब्बत सुनाने लगी। इंशाअल्लाह सम अदर टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल नात शरीफ ऑफ शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। वाज अ ग्रेट आशिक ऑफ अल्लाह एंड हिज नबी अलैहि सलातु वसलाम एंड ग्रेट वलीउल्लाह। वे कैन वी अंडरस्टैंड द कैफियत ऑफ देयर हार्ट्स व्हेन दे वर रिसाइटिंग and composing this poetry. We don't have those hearts, so we can't understand. Our hearts are given to perishable things and beloveds who are illicit, who bring nothing but restlessness in the hearts, worries, problems, anxieties, and azab of Allah tabaraka wa ta'ala. Let us learn to give our hearts to Allah Ta'ala and His Nabi alayhi salatu wasalam. Then we will still enjoy our homes and our cars and our wealth and our property and our children. Then there will be true enjoyment because the person will have sukoon in his heart. Najah.

ये किस वास्ते में तड़पने लगा, सदा क्या ये कानों में आने लगी। सभा मस्त होकर फिर आने लगी, पयामे मोहब्बत सुनाने लगी। पढ़ूं क्यों न दिल से दुरूदो सलाम, पढ़ूं न क्यों न दिल से दुरूदो सलाम। मुझे लज्जते दीद आने लगी, सभा मस्त होकर

बहुत ही गफलत शियार में हूँ, रहा में बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में।

0: और रेगुलर ऑफ साकी आ जा में उल्फत पिला दे। माशाल्लाह इन दिस इट वेल अल्लाह ताला प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम उजूब एंड हसद ऑफ पीपल। इल्लल्लाह Today I won't give much tonight I won't give much explanation. Tapes are available of the past sessions of Bayat. Obtain it if you want from the library.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. This is a ashar composed by Hazrat Mawlana Hakim Muhammad Akhtar Sahib Damat Barakatum. Title Murshid Darkhas Dua. ساقيا

रंग लाएंगी कब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब को जाए। जब नजर आए वो सब्ज गुंबद, कह के सल्ले आला झूम जाए। जब

कब्र में होगा ठिकाना एक दिन। हे यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन।